0: अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। ये महज ख्याल के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं।
1: فَكُلُوا مِمَّا